जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। और फिलहाल आपको बता दूं कि ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप अपनी पसंद की गीत सुन सकते हैं। सुनने का तरीका वही है, हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए। बता दूं कहां करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9868867 यानी 9868867 या फिर आप हमें ईमेल कीजिए fmgoldair@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldair@gmail.com। ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप हम तक पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे समझदार श्रोता भी हैं जिनके पास ऑलरेडी ये नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो मौजूद है, क्योंकि वो हमारे डेली रेगुलर लिसनर्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किन किन के संदेश पहुंच चुके हैं, चलिए सबसे पहले उन्हें शामिल कर लेती हूं उस गीत से पहले जो आज की फरमाइश में शामिल होने वाला है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का हमें मैसेज मिला है। और हमें लिखा है किसने लिखा है ये भाई, शोभा यश, ओम प्रकाश और विठल कर्मा दिया, थानला जिला झाबुआ एमपी से हमें लिख रहे हैं। और ये मैसेज हमें मिला है पंकज मोहोड अमरावती से। सारी जानकारियां बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स हमें लिखी हैं हमारे शो की, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और मजनू कटीला से हमें लिख रहे हैं। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तारडे, आशीष मोहिरकर, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर ने हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से लिखा है। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी हमें लिख रहे हैं। पद्मा टोकीज नेपा नगर से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने हमें लिखा है। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, और संतोष भाकरे, सुनेना सुकन्या और सविता भाकरे ने शाहजी नगर नांदेड़।

महाराष्ट्र से हमें मैसेज पहुंचाया। ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू का हमें मैसेज मिला है खंडवा एमपी से, बड़ा बम चौक से। और हमें लिखा है शबाना भारती, नवाब अहमद, अरहान अहमद, सुफियान, नवाब बलीमारान से हमें लिख रहे हैं। साथ ही ये मैसेज मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का हमें पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मिला है। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान और वारिया ताहिरा का मैसेज। साथ ही होली चौक उत्तमनगर से जयराम खोरवाल का मैसेज। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा और ईशान और पूजा परिहार का हमें मैसेज मिला है। ये मैसेज मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना का हमें मिला है जिला खरगोन सनावत से। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का मैसेज। और ये मैसेज है जी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन और दीपांशु खुरवाल का। और संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई का, दिग्दर्शन और कविता गौड़ के साथ मेरठ कैंट से हमें मैसेज मिला है। मोहम्मद सईद अम्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे परिवार ने हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से लिखा है। ये मैसेज हमें पहुंचा है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से। और प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन का ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से हमें मिला। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से लिखा है। इंदिरा नगर भवरपुर से हमें राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज पहुंचा। और हमें लिखा है बहुत चालाकी से अपना नाम फिर से एक बार, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, संजय दिंगिया, सिराज मिथुन और सलीम अख्तर ने दिल्ली से। देखो चीटिंग किया ना आपने, ये सब मत करिए दोस्त, सिर्फ एक मैसेज अपने ईमेल से भेजिए। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने हमें ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजा है। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश और पूरे संघई परिवार का मैसेज पहुंचा परभणी से। और ये हमें लिखा है अफरोज शेख, नेमुआ, सुपौल, बिहार से। पारुल सिंह, डॉक्टर विवेक वर्धन, डॉक्टर पारुल सिंह हमें लिख रही हैं मेरठ से। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीब, हबीबा, पटियाला रोड, गंज ढुंडवाड़ा, उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज राजेंद्र कुमार सचदेवा का हमें भवानीगढ़ पंजाब से पहुंचा। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा ने हमें लिखा है चंडीगढ़ बिहारी कॉलोनी शाहदरा से। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशुरधान खुराना का मैसेज। और साथ ही सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, सुबोध चौरसिया और सलोनी चौरसिया का, मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से फरुखाबाद से, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित, वीर और अबीर चौरसिया, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया का मैसेज। और ये मैसेज हमें और भी पहुंचे, प्रदीप सलूजा का हमें मिला है कहां से, जनकपुरी से हमें इन्होंने मैसेज पहुंचाया है। और ये मैसेज है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डागरी से बाबू राम जयपाल का मैसेज। अब इससे पहले कि कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, मैं अब उस गीत को शामिल करती हूं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है किसने, सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर ने पुणे से, महाराष्ट्र से हमें ये लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और आपकी पसंद के गीत हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, लेकिन आपके मैसेजेस जो हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। हमें दिवाकर शिनॉय ने मैंगलोर से मैसेज भेजा है और लिखा है, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल पिंगावाला चौक से हमें लिख रहे हैं, कुरैया जालंधर से। और अनवर साबरी, शबनो साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर और जरीफ अंसारी का हमें मैसेज मिला है, दाऊद सराय सहारनपुर से। और राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ का हमें जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज पहुंचा। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पिट्टा बजाज का मैसेज, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर और अर्जुन गवहानकर डुगू का मैसेज हमें पहुंचा है, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा का मैसेज, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा का ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें मिला। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र नौखेलाल हमें लिख रहे हैं, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम का हमें नई बस्ती गंजवाड़ा से मैसेज पहुंचा है। और साथ ही हमारे पास शेरवानी स्कूल गंजवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज। और ये मैसेज हमें किया है सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमारी संचिता वयाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत प्रणाली सानवी, हर्षता का मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से मैसेज। और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, पार ढिंगिया का हमें मैसेज पहुंचा है, बागपत उत्तर प्रदेश से। और साथ ही ये मैसेज, बहुत सारे रिपीट मैसेजेस हैं तो कोशिश करिए कि आप हमें रिपीट मैसेज ना भेजें, वरना ढूंढती रह जाऊंगी उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ एक मैसेज किया है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का हमें मैसेज मिला है, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार का हमें गांव फ्रांसी हिसार से मैसेज मिला। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज। और इसके अलावा मोहम्मद यासीन अंजान, साहिमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत का गिरडीह झारखंड से मैसेज। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी, तृप्ति का हमें मैसेज जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से मिला। सुनील पाठक, कमल यादव, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से। और राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल अद्विक, अतर सिंह के साथ समयपुर दिल्ली से लिख रहे हैं। राजेंद्र जटोलिया, उषा, कृष्णा, पूजा, कोमल और आरव का मैसेज दिल्ली नांगलोई से। और हमें मिला है महेश अग्रवाल का बहादुरगढ़ से मैसेज। सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का एकता कॉलोनी रोहतक से मैसेज। और इससे पहले कि कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, ये गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इस गीत की फरमाइश हमें लिखी है किसने, शोभा, यश, ओम प्रकाश और विठल कर्मादिया ने, थांदला जिला झाबुआ एमपी से। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: नालसा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
1: अब वक्त बहुत कम बचा है तो जल्दी से कुछ और मैसेजेस को भी शामिल कर लेती हूँ। राम नरेश चेक ने रेखा करण चेक अल्पेश और सृष्टि यादव रचना यादव का हमें मैसेज मिला है। संगम विहार हनुमान मंदिर दिल्ली से। थोड़ा सा नामों को और ऊपर नीचे करके क्लियरली लिखेंगे तो पढ़ना आसान होगा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुणाल का हमें मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी ने रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर अंसारी मिराज जहां का मैसेज मधुकिरण का हमें मैसेज मिला है कहां से ये नहीं लिखा आपने और बसंत अकेला का मैसेज हमें पहुंचा है अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार कुलदीप गांधी का और राजेश जैन बिट्टू जैन संजीव जैन गोटना जैन का हमें मैसेज मिला मुलापुर दाखा से और ये मैसेज हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक का मिला भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से और प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है दिल्ली से झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत मयंक और ये सभी परिवार हमें सुन रहा है। कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का हमें मैसेज मिला है दिल्ली से शिषपाल अकेला का हमें मैसेज मिला है गाजियाबाद से और दिलावर खान हसीना बानो अलीजा नायब और लड्डू का रघुवीर नगर से भगवान पाटिल मंगेश पाटिल सचिन महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं और धनोरा विटाली से तहसील नांदुरा जिला बुलडाणा से हमें लिख रहे हैं। इसके अलावा जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विलिस का हमें मैसेज मिला है जनकपुरी सहारनपुर से। बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त बहुत कम है दोस्त तो अब जल्दी से चाहती हूँ कि चलते चलते एक खूबसूरत गीत तक पहुंचा दूं। तो ये गीत राजेंद्र कुमार सचदेवा ने हमें भेजा है भवानीगढ़ पंजाब से। तो ये रहा खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

0: संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव और जसवी यादव का हमें मैसेज मिला है और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा है और इसके अलावा हमारे पास बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी और साथ ही फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश डुमराव बिहार से भी इनके दोस्त, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज लिखा है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज मिला है और इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स में मैं लेती हूँ इजाजत। फिर से मिलूंगी 11:10 पर, जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण करोड़ों लोगों को अपने घर, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों

और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त अरब अमीरात से भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने के नीति में एक नया मील का पत्थर है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पीछा कर रही है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं पहले प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद और उसके बाद आप सुनेंगे तस्वीर। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है।

0: और उसे कामयाबी पर कभी तो हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, चखाएंगे मजा बर्बादी गुलशन का गुलरची को, बाहर आएंगे उस दिन जबकि अपना बागबान होगा। दोस्तों, आजादी के दीवाने शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब के इसी जज्बे की बदौलत
1: वो दिन भी आया जब हमारा देश बरसों की गुलामी से आजाद हो गया। दिन था 15 अगस्त 1947 और हमारी आजादी का वक्त था आधी रात को ठीक 12 बजे। बरसों की गुलामी के बाद आजादी की सांस और एक नया हिंदुस्तान जिसके लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
0: आजादी के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी इस देश को संभाल कर रखना, जो लोग शहीद हो गए उनकी कुर्बानी को जाया ना होने देना। इस बात को बखूबी समझते हुए हमारे देश के महान कर्णधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब,
1: श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे आज के प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्मवीरों की दिन रात मेहनत के बदौलत हमारा देश आज पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर चलने की ताकत रखता है।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: आज जब हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है, तो फिर कभी कभी ऐसा क्यों लगने लगता है कि शायद देश का आजाद होना अभी बाकी है। आजादी के बाद से अब तक हमारे बाहर के दुश्मन तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन हद तो यह है कि आज हमारे देश में ही ऐसे कौन लोग पैदा हो गए हैं
2: जो हमारे हिंदुस्तान को कमजोर करके किसी बाहर वाले को खुश करना चाह रहे हैं। शायद ये वो लोग हैं जो आजादी का मतलब नहीं समझते, या फिर चंद पैसों या सत्ता के लालच में आकर इस आजादी का मोल समझना नहीं चाहते। वजह चाहे जो हो, लेकिन ऐसे लोगों की विचारधारा और उनके द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा क्या हमारे विकसित भारत के लिए सही है?
3: बिल्कुल नहीं। ऐसी देश विरोधी ताकतों को तो हम क्या ही कहें, लेकिन उम्मीद तो हमें हमारे देश के उन नौजवान साथियों से लगानी चाहिए जिनके कंधों पर हमारे आने वाले कल की नींव टिकी है।
2: इसीलिए अब ये दारोमदार हमारे देश के उन नौजवानों के मजबूत कंधों पर है कि कोई भी दुश्मन हमारे देश को कमजोर न कर सके। और यकीनन हमारे देश के नौजवान
3: और हमारे आज के सिपा सलार इस बात को बखूबी समझते हैं कि दुश्मन चाहे घर का हो या बाहर का, देश कमजोर नहीं होना चाहिए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजादी के बारे में कहा था कि ये अनमोल है, इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और देश के 11वें राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था
1: कि बजाय ये सोचने के कि देश ने तुमको क्या दिया, अपने आप से ये पूछो कि तुमने देश को क्या दिया और क्या दे सकते हो। आज अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे के मामले में ऐतिहासिक प्रगति की है।
2: आज भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। हाईवे, रेलवे और एयर पावर नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। UPI से होने वाले डिजिटल लेन देन में वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बहुत बढ़ गया है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग ने दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
1: और ये सब संभव हुआ है हमारे भारत की युवा शक्ति के सहयोग से। और जब तक भारत का युवा देश के साथ है, भला भारत का कोई क्या बिगाड़ सकता है। दुश्मन चाहे देश के अंदर का हो या बाहर का।
2: याद रहे कि भारत का नौजवान इतना नासमझ नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उसको गुमराह कर सके।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं।

0: बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
1: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
2: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
3: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
4: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
3: कैसे?
0: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
1: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
0: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.merawazood.com पर।
1: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
0: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
0: और अदिति को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।

मैं हमेशा सोचती हूँ कि पक्षी एक ही जगह पर क्यों रहते हैं, जबकि वो पृथ्वी पर कहीं भी उड़ सकते हैं। आप भी ऐसा सोचते हैं ना? फिर खुद से ख्याल सवाल आता है कि खुद के बारे में भी तो सोचूं। मैं खुद भी तो यही कर सकती हूँ ना, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ही जगह पर क्यों रहती हूँ? और जब ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो मैं तो उड़ चलती हूँ लेकर अपना लगेज अपने साथ, और कहीं ना कहीं सैर पर ज़रूर निकल जाती हूँ। पर आप शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मन बनाइए, कहीं घूम आइए। और अगर अभी कहीं जाने का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ तस्वीर के इस सफ़र में चल पड़िए, क्योंकि घर बैठे या जहाँ पर भी हैं आप, आपको हम एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, उस जगह पर जहां आप कभी आने वाले वक्त में जाने का प्लान कर सकते हैं या फिर कभी गए भी हो सकते हैं। तो चलिए आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रही हूं, देखते हैं कि उस जगह आप कभी गए हैं या नहीं। ये जगह है ओरछा, मध्य प्रदेश का ओरछा। बुंदेला काल की अद्भुत गाथाओं को समेटे हुए ओरछा एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के रूप में मजबूती से कायम है, जिसने बुंदेला वंश के शासकों की संस्कृति और गाथाओं को संजो कर रखा है। सरदार रुद्र प्रताप सिंह ने बेतवा नदी के किनारे एक भूखंड पर ओरछा की स्थापना की थी, और ये अद्भुत शहर आपको अपनी यात्रा के दौरान मंत्रमुग्ध कर देगा। तो एक बार यहाँ जाने का प्लान जरूर करिए, क्योंकि ये मित्रों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। ओरछा में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल हैं और मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। क्या कुछ है यहाँ देखने को, करने को, रहने को, घूमने को, खरीदने को, सब कुछ बताऊंगी मैं, लेकिन रहिएगा मेरे साथ इस सफर में जिसे हम कहते हैं तस्वीर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 11:27:38 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा चैनल FM गोल्ड।

0: से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: दोस्तों, आज आप और हम निकले हैं कहां पर, मध्य प्रदेश के ओरछा शहर की सैर में। तो वही देखते हैं कि यहां पर क्या क्या है। बेतवा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है ये। 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित है और ये जगह राजपूत और मुगल वास्तुकला के अद्भुत संगम, अनूठी राम राजा लोक संस्कृति और समृद्ध बुंदेली परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां पर आप क्या क्या देख सकते हैं, अगर मैं कहूं तो यहां एक राजा महल है जिसको आप देखने के लिए जा सकते हैं। ओरछा के राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में राजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि इस संरचना को पूरा करने का काम अंत में रुद्र प्रताप सिंह के उत्तराधिकारियों ने संभाला, जिनमें सबसे लोकप्रिय मधुकर शाह थे। ये एक वर्गाकार संरचना है जिसके दो भागों में तीन तरफ 5 मंजिलें और चार तरफ और एक तरफ 4 मंजिलें हैं। निजी सभा कक्ष के दाई और 4 रानियों के शयन कक्ष हैं। सम्राट का केबिन सामने की तरफ है। चतुर्भुज मंदिर की गर्भगृह के समान स्तर पर स्थित है। राजकक्ष की छत को जीवंत रंगों से खूबसूरती से सजाया गया है। महल की दीवारों पर रामायण के दृश्य और बुंदेला दरबार की शान को दर्शाने वाले कई चित्र लगे हैं। सुंदर पत्थरों की नक्काशीदार ग्रिल महल को एक भव्य शाही रूप देती है और कोणीय शाफ्ट कमरों में प्राकृतिक हवा और प्रकाश के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। महल के कुछ हिस्सों को शीश महल नाम एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जो ओरछा के स्थलों का भ्रमण करने वालों के लिए ठहरने के लिए एक खुली जगह है। महल का आंतरिक भाग दर्पणों के टुकड़ों से सजाया गया है और इसमें भव्य शाही आवास भी शामिल है। ये अद्भुत वास्तुकलाएं ओरछा किले के परिसर के भीतर शान से खड़ी हैं और यहाँ आने वालों का दिल जीत लेती हैं। तो आपको एक बार जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। ओरछा में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बुंदेला वंश से जुड़ा है और ये मंदिर एक वर्गाकार संरचना है जिसे राजा वीर सिंह देव ने 1622 में बनवाया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर खिड़की जैसी नक्काशी है। प्रांगण चारों तरफ से दीवारों से घिरा है और इसमें खुली गैलरियां हैं। प्रांगण के केंद्र में अष्टकोणीय गर्भगृह के सामने एक हॉल स्थित है। गैलरी और गुंबदाकार छतों पर बने लक्ष्मी नारायण मंदिर की सबसे कलात्मक विशेषता है यहां के चित्र। मंदिर की दीवारों के ऊपर हिस्से पर कुछ सुंदर चित्र बने हुए हैं और इनमें कुछ रामायण के प्रसंग और भगवान विष्णु के 8वें अवतार लक्ष्मी नारायण के चित्रण हैं, जबकि कुछ में पौराणिक युद्ध संबंधी और सांसारिक दृश्य दर्शाए गए हैं। यहाँ एक चुंगी चिड़िया का भी चित्र है जो आप देख सकते हैं। एक विशाल काय पक्षी था जो अपने पंजों में हाथी को उठाकर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता था। तो ये सब कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। इसके अलावा ओरछा में है छतरियां, जहां पर आप जा सकते हैं। दक्षिण में बेतवा नदी के दाहिने किनारे पर बुंदेला राजाओं और उनके परिवारों के बाकी सदस्यों को समर्पित 15 स्मारक हैं, जिन चबूतरों पर छतरियां बनी हैं और गर्भगृह दोनों वर्गाकार हैं। पहली छतरी में मधुकर शाह और उनकी पत्नी की संगमरमर की प्रतिमा है, जिसके ऊपर एक चित्रित छत्र है। नदी के किनारे से दिखाई देने वाली इस श्रृंखला की अंतिम छतरी बिल्कुल वर्गाकार है, जो वीर सिंह देव को समर्पित है। एक चतुर्भुज मंदिर है जहां आप जा सकते हैं। ओरछा की अन्य इमारतों की तुलना में इस मंदिर की वास्तुकला अनूठी है। मंदिर का गुंबद उभरा हुआ नहीं बल्कि मस्जिद के गुंबद की तरह चिकना है। मंदिर का प्रांगण खुला है और इसमें बुंदेला समुदाय की छतरियों जैसी मीनारें बनी हैं। मंदिर के अंदर 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है, जो उस एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है और प्रतिमा को भव्य रूप देती है। एक और जगह है जहां आप जा सकते हैं, जिसे जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासक वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण सम्राट जहांगीर की ओरछा की पहली यात्रा के सम्मान में किया गया था। महल के प्रवेश द्वार पर पारंपरिक और सुंदर गेट है। महल

की पूर्व मुखी सामने की दीवार फिरोजी टाइलों से सजी है। प्रवेश द्वार पर दो पत्थर के हाथी घंटी बजाकर आपका स्वागत करते हैं, जो उस समय के राजा के प्रवेश का प्रतीक है। खिड़कियों के ब्रैकेट जैन वास्तुकला के अनुरूप लहरदार शैली में बने हैं। इसे हल्के रंग की सिरेमिक टाइलों से खूबसूरती से सजाया हुआ है और इस तीन मंजिला इमारत में कुछ अद्भुत मूर्तियां, सुंदर बालकनीज, छतरियां और खूबसूरती से नक्काशीदार गुंबद भी हैं, जो इसकी स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाते हैं। एक और जगह है जो ओरछा में बहुत खास है, आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए, जिसे श्री राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। राम राजा मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा देवता के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। इसे ओरछा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओरछा स्थित श्री राम राजा मंदिर को सफेद, गुलाबी और पीले रंगों से खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर से जुड़ी कथा इसकी दीवारों की तरह ही जीवंत है। ओरछा के शासक मधुकर शाहजू देव भगवान कृष्ण के अनुयायी थे, जबकि उनकी पत्नी भगवान राम की अनुयायी थी। एक बार रानी ने राजा के साथ ब्रज मथुरा जाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अयोध्या जाना चाहती थी। राजा ने जिद की और उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया। राजा इससे नाराज हो गए और उन्हें निर्देश दिया कि वो तभी वापस लौटें जब वो अपने साथ भगवान राम को लेकर आए। जब रानी अयोध्या पहुंची तो उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना शुरू की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरकार हताश होकर उन्होंने आधी रात में सरयू में छलांग लगा दी। रानी की प्रार्थना और भक्ति को देखते हुए भगवान ने उनकी गोद में बालक के रूप में खुद को स्थापित किया, बालक का रूप धारण किया और उनकी गोद में आकर वो विराजमान हुए। प्रस्थान करने से पहले भगवान राम ने तीन शर्तें रखी कि मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करूंगा ताकि ऋषियों के साथ ओरछा पहुंच सकूं। दूसरी, ओरछा पहुंचने पर मैं ओरछा का राजा बनूंगा। और तीसरी, जिस पहले स्थान पर तुम मुझे बिठाओगी वही मेरा अंतिम निवास स्थान होगा। भगवान ने ये निर्देश दिए। जब राजा को पता चला कि रानी भगवान राम के साथ ओरछा लौट रही हैं, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण काम शुरू करवा दिया। लंबी यात्रा से लौटी रानी अपने महल में भगवान राम के साथ बैठे हुए रात्रि विश्राम के लिए अपने कमरे में जाने का फैसला कर ही रही थी, लेकिन भगवान राम की इच्छा के अनुसार उन्होंने जिस स्थान पर सबसे पहले रानी ने उन्हें स्थापित किया, जहां विश्राम किया, उन्होंने उसी जगह पर अपना जो निवास स्थान था वो बनवा लिया। और रानी के महल का नाम आज तक रामराज मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें रानी ने लाकर वहीं पर स्थापित किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ओरछा में देखने के लिए, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, जैसे कि यहाँ का बर्ड सेंचुरी है और भी कुछ है जो आप जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस गीत को आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद आपको कुछ बताऊंगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: नमस्कार, 45 मिनट और 39 सेकेंड हो चुके हैं। आप पे आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ तस्वीर का ये सफर, जिसमें आज हम और आप यात्रा कर रहे हैं ओरछा की। जी हाँ, ये जो जगह है ओरछा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का खास टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप बहुत कुछ देखने के लिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ओरछा पक्षी अभयारण्य है, जिसे कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी है। और ये जो सेंचुरी है प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण है। 46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जीव जंतुओं, बेतवा नदी और कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पौधों की उपलब्धता की वजह से खास महत्व रखता है। तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। ये बर्ड सेंचुरी सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ओरछा आने वालों के लिए। आप चाहें तो बेतवा नदी में राफ्टिंग करने के लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं बाल विकास निगम पर्यटकों के लिए बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग का आयोजन करता है और राफ्टिंग खूबसूरत कंचन घाट से शुरू होकर शिव घाट पर समाप्त होती है। राफ्टिंग उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है जो रोमांच के साथ साथ ओरछा की सैर करना चाहते हैं। राफ्टिंग के दौरान आपको छतरियों की कतार देखने को मिलेगी, जो ऐतिहासिक भव्यता का अद्भुत नजारा पेश करते हुए राफ्टिंग का रोमांच जो है वो बहुत ही बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहां आपको कब जाना चाहिए ओरछा में, तो अभी नहीं, इस गीत के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्तों मानसून का मौसम ओरछा घूमने और इसकी स्थापत्य कला की भव्यता का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय है। आसमान में बादल और धुंध भरा वातावरण मंदिरों और महलों के दर्शन के अनुभव को और भी सुखद बना देता है। लोग सर्दियों में भी इस शहर की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए गर्मियों के चरम मौसम में ओरछा की यात्रा से बचना ही सही है। अगर आप पूछें कि भाई यहाँ पहुंचना कैसे है, तो बता दूं कि बाय एयर यानी हवाई मार्ग से अगर आप यहाँ जाना चाहें तो ओरछा से निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर हवाई अड्डा है, जो 142 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली, मुंबई और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, जो 440 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में पुनर्विकसित ओरछा रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सजा है, जिससे यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुखद अनुभव मिल सकता है। ये स्टेशन प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे ये पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक आगमन स्थल बन जाता है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित झांसी जंक्शन निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है, और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और यहां पूरे सप्ताह नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। बाय रोड अगर आप जाना चाहें तो सबसे करीबी बस स्टैंड है झांसी में, ओरछा झांसी और खजुराहो के बीच स्थित है और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा है। झांसी से ओरछा के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवा आसानी से आपको मिल जाएगी, तो आप जिस तरीके से भी जाना चाहें पहुंच जाइए। हाँ, अगर बात करूं यहां की तो भाई यहां का जो लोक जीवन और खान पान है वो बुंदेली जनजीवन से प्रभावित है। ओरछा के लोकगीत, आला गायन और स्थानीय त्यौहार बुंदेलखंड की मूल संस्कृति को जीवित रखते हैं। खान पान यहां की पारंपरिक बुंदेली थाली, भुट्टे की कीस, पोहा और स्थानीय मिठाइयां बेहद लोकप्रिय हैं, तो आपको इनको जरूर टेस्ट करना चाहिए। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ओरछा में मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प, डोकरा, मेटल क्राफ्ट जो कि धातु से बनी हुई कलाकृतियां हैं, लघु चित्रकलाएं, हैंडमेड पेपर पेंटिंग्स और चंदेरी या रेशमी साड़ियां आप यहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय बाजारों से बुंदेलखंडी स्मृति चिन्ह यानी सुवेनियर आप लेकर आ सकते हैं। हस्तनिर्मित बैग और सजावट का सामान भी यहां पर बेहद लोकप्रिय है, जो आप खरीद सकते हैं। ओरछा वैसे तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ खरीदारी के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में डोकरा की धातु की कलाकृतियां, लोहे की बनी वस्तुएं, शोपीस, स्मृति चिन्ह, रंगीन स्कार्फ, डिजाइनर हस्तनिर्मित शर्ट और कुर्तियां, जूतियां, जूते जैसे हस्तशिल्प सामग्रियां, टोपियां, मास्क, की रिंग्स, बुंदेला कलाकृतियों की प्रतिकृतियां, वॉल हैंगिंग, मिट्टी के बर्तन, लघु चित्रकलाएं, ये सभी चीजें अच्छे रेट्स पर आपको मिल जाती हैं। ये सभी चीजें छोटी छोटी दुकानों में आसानी से मिलती हैं, जहां आकर्षक स्मृति चिन्ह भी बेचे जाते हैं। अगर इनमें से आपका मन ना भरे तो खजुराहो का बाजार आपके लिए सबसे अच्छी जगह है, जहां आपको और भी ज्यादा अलग अलग वेराइटी यहां पर मिल सकती है। ओरछा सदर बाजार में बिकने वाली रेशमी साड़ियों या चंदेरी रेशमी के लिए भी प्रसिद्ध है, ये असली होती हैं और खरीदने लायक होती हैं, तो आप यहां से इन्हें भी खरीद सकते हैं। वही बहुत कुछ है वैसे तो ओरछा के बारे में जानने को, लेकिन अब क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है तो चलते चलते एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं और फिर आगे क्या है जरूर आपको बताऊंगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

और इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा, लेकिन फिर किसी रोज किसी और खूबसूरत सफर में जरूर होगी मुलाकात। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा CBI जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और

मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग आधा प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Garden.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम घर आंगन, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के अनुभवों की, बदलते समय की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे जीवन में खुशियां और रंग भरती हैं। और आज के सफर में मैं यानी प्रतिभा और
2: रश्मि कुकरेती आपके साथ रहेंगे।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार
2: भरा नमस्कार जी।
1: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और रश्मि जी, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम श्रोता जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन समर्पित होता है हमारे बुजुर्गों को, और हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर
2: जी, है ना? और एक कदम बुजुर्गों की ओर जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम बात करेंगे परंपरा से लेकर तकनीक तक की, और खान पान से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक की, और उनके शौकों की जो उम्र के हर पड़ाव पर प्रतिभा जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रम घर आंगन में। और देखिए रश्मि जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ, है ना
2: जी।
1: तो अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछ लेते हैं आज का।
2: तो क्या है प्रतिभा आज का प्रश्न?
1: आज का प्रश्न ये है कि बुजुर्गों के
2: अनुभव और युवाओं की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और हम ये भी बता देते हैं प्रतिभा कि ये जो जवाब है वो कहाँ लिखकर भेजेंगे, यानी हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और इसके अलावा मैं एक और आईडी बता रही हूँ आपको, fmgoldaidelhi@gmail.com, यानी कि fmgoldga@gmail.com और fmgoldaidelhi@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पर हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और बात की है तुमने प्रतिभा देश की, तो सुन लेते हैं देश की ओर चलता हुआ गीत।

0: गोदान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। और रश्मि जी, देखिए भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। अलग अलग राज्यों की अपनी परंपराएं, त्योहार और मान्यताएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती है।
1: यानी प्रतिभा, आज आप जो बात करने जा रही हैं वो है तमिलनाडु के एक ऐसा ही जो खूबसूरत पर्व है, आदिपुरम।
0: जी जी, और जो कि तमिल महीने आदि में मनाया जाने वाला ये जो ये पर्व है वो देवी आंदाल को समर्पित है। और इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्त श्रद्धा के साथ उत्सव में शामिल होते हैं।
1: जी, और जो देवी आंदाल है उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है प्रतिभा
0: जी,
1: कि उन्हें आदिपुरम की जो कहानी है वो श्री विल्लीपुथुर जन्मे शहर में जन्मी देवी अंदाल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। अंदाल, जिनको गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहते हैं कि मंदिर के उद्यान में एक शिशु के रूप में वहां के पुजारी को मिली और उन्होंने उसे प्यार से पाला पोसा और अपनी बेटी की तरह रखा। बाद में यही आंदाल बड़ी होकर भगवान विष्णु की समर्पित भक्त बनी और जो मंदिर श्री रंगम के भगवान रंगनाथ जी उनकी वो बहुत बड़ी भक्त हुई। और किंवदंती है कि वो जो है रोज उनके लिए मालाएं बुनती ताजे फूलों की और पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ समर्पित करती। और जो उनकी कविताएं हैं जिन्हें की तिरुअपवई और नचियार तिरुमोझी के नाम से जाना जाता है, उसमें जो भगवान विष्णु से मिलन की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त करती। तो ये लंबा चलने वाला उत्सव है और बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि लंबा चलता है, 10 दिनों तक चलता है ये उत्सव और इसका जो समापन होता है वो मुख्य पूरम के दिन होता है। और उत्सव के अंतिम दिन भगवान रंगनाथ स्वामी और देवी आंदाल का दिव्य विवाह अत्यंत धूमधाम से कराया जाता है। और रश्मि जी जानती हैं कि मंदिर में देवी को कांच की हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं और बाद में उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद के रूप में भक्तों को, विशेषकर महिलाओं को, वो बांटी जाती हैं।
1: और हरी चूड़ियां जो हैं वो इंगित करती हैं सावन की ओर। और हम फिर वापस चलते हैं उसी गीत।

0: रश्मि जी, देखिए मेल आने शुरू हो गए हैं
1: जी,
0: है ना। और सबसे पहले हमारे पास मेल आया है नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि बुजुर्गों के अनुभव कभी पुराने और गलत नहीं हो सकते, दोनों को एक दूसरे की बात सुनकर समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।
1: तो जी, और अफरोज शेख कह रहे हैं कि बुजुर्ग अगर कोई काम करने की सलाह दे रहे हैं तो उनको सही मानते हुए और सोच समझ कर ही काम करना चाहिए।
0: और एक और मेल आया है चरणदास जी का हिसार से। वो कहते हैं कि बुजुर्गों ने लंबा समय देखा है और समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, अपनी गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे पूछकर काम करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही। और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं नागलोई से, आप कह रहे हैं राम राम, हमारी भी राम राम आपको। और कहते हैं कि बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों से बच्चे अपने मन की बात अगर कहने लग जाएं तो बहुत तरक्की हो जाएगी, यानी बिगड़े हुए काम भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई बड़ों ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उनका तजुर्बा जो है जिंदगी भर काम आता है, तो उनका तजुर्बा और जो युवा हैं उनका, उनकी ऊर्जा अगर मिल जाए, प्रतिभा, तो हमें लगता है हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा।
0: बहुत ही सही बात है ये। और देखिए मेल हम पढ़ते रहेंगे और हम श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने जवाब हमें fmgoldga@gmail.com पर भेजते रहिए। तो रश्मि जी, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं
1: जी,
0: है ना।
1: जी.
0: और देखिए स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान बहुत जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और जब मौसम हो बारिश का तो थोड़ी ज्यादा सावधानी तो बनती है, क्यों है ना?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं
0: और
1: आप।
0: देखिए बारिश का मौसम आते ही मन करता है गरम गरम चाय पकौड़े मिले और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का मन सभी का ही करने लगता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस मौसम में खान पान को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भोजन हो वो ताज़ा हो, अच्छी तरह पका हुआ हो, खुले हुए रखें अगर भोजन हो तो वो ना खाएं, और बहुत ज़्यादा तले भुने खाने से भी प्रतिभा बचना ही चाहिए, है ना। क्योंकि उम्र के साथ हम सभी का जो पाचन तंत्र होता है, बुजुर्गों का ही क्या, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में जो गरिष्ठ भोजन होता है स्वादिष्ट तो ज़रूर लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए मौसम जो बारिश का मौसम होता है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, प्यास कम लगने लगती है, लेकिन शरीर को तो पर्याप्त पानी की जरूरत होती ही है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहें। और सबसे जरूरी बात कि बारिश के मौसम में जो पानी है उसको उबाल कर पिएं, क्योंकि बारिश में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: हाँ, और अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है तो भाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान रखे, और जो परिवार में प्रतिभा युवा सदस्य रहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने समय पर खाना खाया या नहीं, पानी पूरा पी रहे हैं, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल, देखिए श्रोताओं भाई, आखिर सेहत की देखभाल बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही होती है।

0: सुराग, अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को
1: जी। और
0: रश्मि जी, अब बात करते हैं सिल्वर इकोनॉमी की।
2: जी बिल्कुल। और सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ है प्रतिभा, जो बुजुर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आर्थिक गतिविधियां।
0: जी,
2: जैसे वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों की जो रोज की देख जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। तो क्योंकि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जो बुजुर्ग आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ये बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल,
2: है ना?
0: बिल्कुल। और देखिए, बुजुर्गों के लिए तकनीक, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े नए आइडियाज को वित्तीय सहायता देना, मतलब जो इस सिल्वर इकोनॉमी का जो उद्देश्य है उसकी जो रणनीतियां हैं उसमें ये आता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर ब्याज दर वाली पेंशन योजनाएं और सुरक्षित निवेश विकल्प लाना, साथ ही साथ बुजुर्गों की सुविधा के लिए धार्मिक सांस्कृतिक जो टूरिज्म है
2: जी,
0: है ना, जहां बुजुर्ग जनरली देखिए जाना चाहते हैं, है ना
2: जी, बिल्कुल,
0: उनके लिए आरामदायक पर्यटन पैकेजों का विकास करना, ये सब आता है
2: जी। क्योंकि देखिए, जब बुजुर्ग यात्रा करते हैं तो उनकी जरूरतें अलग तरह की होती हैं। कई बार ऐसा होता है घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, उनको व्हील चेयर्स की आवश्यकता रहती है, मेडिसिन की आवश्यकता रहती है और हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से जो उनकी उनकी जो पर्यटन की सुविधाएं उनको जो दी जाती हैं, उस प्रकार के स्टार्टअप्स शुरू करना, ये भी बिल्कुल सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुई बातें हैं। इसके अलावा जैसे बुजुर्ग होते हैं प्रतिभा, उनके लिए दवाएं, अस्पताल और घर में दी जाने वाली जो चिकित्सा है ना, वो देखभाल, जब उससे जुड़े स्टार्टअप्स आते हैं तो ये एक तरह से सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं। तो ये भी बढ़ाने की जरूरत है, इसमें भी बहुत अवसर हैं।
0: और साथ ही साथ देखिए, पेंशन बीमा और निवेश योजनाओं को भी उम्र दराज लोगों के लिए जो जरूरी होती हैं उनका भी इस इकोनॉमी जो सिल्वर इकोनॉमी है उसके अंदर उसका ध्यान रखा जाता है
2: जी, है ना? और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष सुरक्षित आवास, जिन्हें कहते हैं ना कि रियल एस्टेट में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना सीनियर सिटीजन लिविंग होम्स होते हैं जहाँ की विशेषकर उन्हीं की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका पूरी जो है नियोजन किया जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो इस प्रकार की जो सिल्वर इकोनॉमी है, जो भारत में अर्थ और अर्थ का दायरा और उसका बहुत महत्व है, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो समाज में आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं।
0: बिल्कुल।

0: जो हरियाणा से लिख रहे हैं वो हमको नमस्कार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी है हर काम में, उनका तजुर्बा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, परखा है, उनकी परख कभी भी व्यर्थ नहीं गई और उनका जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत जरूरी है अगर आपको कामयाब होना है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
1: जी, और शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं किताबों से अच्छा ज्ञान किताबों से अच्छा ज्ञान होता है और अनुभव का ज्ञान अनुभव का ही ज्ञान होता है, हमारे बुजुर्गों के पास वो होता है। और क्योंकि जो समझ और समय जब एक साथ होते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।
0: और देखिए डी राजेश्वर राव जी कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं वो लिविंग ब्रिज की तरह होते हैं, हमारे परिवार, हमारे इतिहास, हमारे संस्कार और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी भाषा होती है और वो हमारी जो रूट्स होती हैं, कल्चरल रूट्स, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरण होती है।
1: जी, हम तो ये कहेंगे ना कि बुजुर्ग दिशा दिखाएं और युवा जो है उस दिशा में गति दें तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।
0: जी
1: और एक और मेल आ गई है हमारे साथ, आप हैं सुरभि, मयूर विहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात कही है, कहे भाई बुजुर्ग कहेंगे हमारे जमाने में ऐसा होता था और युवा कहेंगे दादाजी हम इसका ऐप बना देते हैं। तो जब इस प्रकार की कुछ विचारधारा जुड़ेगी ना तो भाई क्या बात होगी। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव की गाड़ी हैं और युवा एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जब दोनों साथ चलेंगे तो देश की यात्रा जो है और भी तेज होगी और रास्ता भी सही रहेगा।
0: और देखिए मतलब जब ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी तो जीवन का सफर भी बहुत सुहाना होगा, है ना। और तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में,
1: जी, और
0: है ना।
1: जैसा कि विचार था तो नई पीढ़ी के साथ कदम ताल मिलाना बहुत जरूरी
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: दोनों जो हमारी पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है,
0: जी
1: तो ऐसा ही कुछ विचार लेकर हम बात करते हैं।
0: हाँ। देखिए आज की दुनिया में स्वस्थ और सक्रिय रहने के साथ साथ बदलती दुनिया से जुड़े रहना भी तो जरूरी है, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं रश्मि जी, वो इसमें किसी से भी पीछे नहीं है।
1: आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, जो काम कभी चिट्ठी लिखकर या बैंक की लंबी कतार में लगकर किए जाते थे उनमें से कई काम ऐसे हैं जो अब तो बैठे बैठे मोबाइल पर कुछ मिनटों में हो जाते हैं और हमारे बुजुर्ग भी इस बदलाव के साथ कदम ताल कर रहे हैं।
0: जी, और देखिए वरिष्ठ नागरिक आज स्मार्टफोन चला रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे परिवार से जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन जानकारी लेते हैं आज हमारे बुजुर्ग, और साथ ही साथ जो डिजिटल सुविधाएं हैं उनका भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं, है
1: वही
0: ना।
1: कभी कभी तकनीक थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है, ऐसे में जो नई पीढ़ी है उसका फर्ज है कि वो धैर्य के साथ बुजुर्गों की मदद करें, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना ये एक तरफा रख नहीं है, आप उसी पेड़ के फल हैं भाई जो बूढ़ा हो चुका
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और देखिए युवा पीढ़ी तकनीक सिखा सकती है तो वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव और जीवन की समझ को साझा कर सकते हैं। वही आखिर नई और पुरानी पीढ़ी का साथ ही तो परिवार को मजबूत बनाता है
1: और
0: ना।
1: ये कदम ताल सिर्फ तकनीक सीखने और सिखाने का नहीं है भाई, दिल से दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, जहां जरूरत हो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, जो आज हमारे बुजुर्ग और युवक भी कर रहे हैं और भी करें तो कितनी अच्छी बात हो।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु में। और रश्मि जी देखिए मेल हमारे पास आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ महेश अग्रवाल जी का।

0: मेरा गांव मेरा देश, अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। और रश्मि जी
1: जी बिल्कुल
0: है ना, देखिए जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब व्यक्ति थक कर बैठ जाता है ना, यानी जब वृद्धावस्था आ जाती है, तब एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि है आर्थिक सुरक्षा, है ना।
1: भाई। देखिए समय के साथ जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, काम की व्यस्तता भी कम होती है, लेकिन जो खर्ची है, जरूरतें हैं, वो थोड़ा थोड़ा बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है प्रतिभा की आर्थिक सुरक्षा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: बिल्कुल, देखिए अपनी पेंशन बचत और नियमित खर्चों का ध्यान रखना जरूरी, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और भविष्य के खर्चों की योजना बनाना ऐसे में बहुत उपयोगी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है ना।
1: जी,
0: और
1: और इसमें पहले ही हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या निवेश करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो आर्थिक फैसले होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं होनी
0: जी
1: चाहिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी तरह के निवेश में अपना पैसा लगाने से बचना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात जो बार बार हम FM गोल्ड चैनल से कहते हैं कि अनजान लोगों के साथ बैंक की जानकारी और OTP और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी भाई कभी भी साझा ना करें।
0: बिल्कुल, और देखिए किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले परिवारजन या किसी जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनसे सलाह लें, और परिवार के सदस्यों को भी चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक मामलों में उनका सहयोग करें वो, है ना, और
1: जी
0: उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है।
1: जी
0: मतलब जब अपनों का साथ मिलता है तो बुजुर्गों को भी बहुत अच्छा लगता
1: जी
0: है ना।
1: और आर्थिक सुरक्षा जब होती है ना प्रतिभा, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है ना। एक विश्वास होता है कि हाँ, कोई भी अगर समस्या आएगी तो मेरे पास उतना धन है,
0: जी
1: उतनी उतने मैं मजबूत हूँ आर्थिक तरीके से, कि मैं भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आर्थिक सुरक्षा भविष्य को सुरक्षित तो करती ही है, लेकिन जिंदगी सिर्फ भविष्य की चिंता करने का नाम नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, मतलब
0: जी
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल
0: जी
1: जैसा, जो
0: हाँ
1: हमें खुशी भी दे, व्यस्त रखे, हर दिन का इंतजार भी करवाए, अपने कार्यक्रम जो है एक कदम बुजुर्गों की ओर, ये सुनने का और गीत संगीत के साथ जुड़ने का।
0: बिल्कुल।

0: रोटी कपड़ा और मकान, अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए रश्मि जी, एक मेल है हमारे पास
1: जी
0: उग्रसेन यादव जी का। वो कहते हैं कि बात बुजुर्गों की हो तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जो नई जनरेशन है, अगर वो अपने बुजुर्गों के साथ रोज कुछ घंटे, एक घंटा अपने बुजुर्गों के साथ बैठे तो उनके अनुभव को सुनकर धीरे धीरे जो हमारी युवा जो जनरेशन है, जो हमारे जो युवक हैं, उनका हृदय परिवर्तन होने लगेगा, उनमें संस्कार आएंगे और जो युवा हैं वो बुजुर्गों की तकलीफों को करीब से जान पाएंगे, उनको समझेंगे, और इससे दोनों का ही अनुभव बढ़ेगा और बुजुर्गों को आपसे मदद मिलेगी।
1: जी
0: तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने।
1: जी और उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं कि हमें अपने बड़ों के कहने पर चलना चाहिए, और जो बुजुर्गों के साथ अगर आप काम करेंगे, उनके अनुभव से सीखेंगे, तो भाई वो कहते हैं लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा शीशपाल वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। वो कहते हैं कि मैं 75 साल का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल यंग मानता हूँ जी। और आप हैं शीशपाल अकेला जी, लेकिन आप अकेले कहाँ हैं, आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ हैं, एक कदम बुजुर्गों की ओर इस कार्यक्रम के साथ हैं जो आप ही के लिए खासकर बनाया गया है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल हम तो कहेंगे कि अगर आप सेहतमंद हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं और रोज अगर आप जो है एक्टिव हैं, तो फिर हम कहेंगे

0: बीमारियों से भी दूर रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल एकदम जवान महसूस करेंगे, और हम ये कहेंगे जो युवा हैं प्रतिभा उन तो वो तो अगर तकनीक सिखाएं बुजुर्गों को, और युवा जो हैं बुजुर्गों से धैर्य सीखें
1: जी,
0: क्योंकि युवाओं को वाईफाई चाहिए और बुजुर्गों को उनका साथ चाहिए,
1: जी,
0: तो फिर हमें लगता है कि ऐसा जब दो पीढ़ियां जुड़ेंगी तो अनुभव और ऊर्जा का संगम होगा और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्या कहती हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रश्मि जी। देखिए ये बहुत जरूरी है, बुजुर्ग अपने जीवन और कार्य क्षेत्र का अनुभव युवाओं से साझा करके युवाओं को मतलब बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और युवा जो हैं वो अपने अनुभव को नई तकनीक और आधुनिक सोच के साथ बुजुर्गों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना?
0: इसके अलावा रोजगार और उद्यमिता की अगर हम बात करें, ये तो अनुभवी बुजुर्ग जो हैं वो युवाओं को व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं, और युवा नए स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसके अलावा दोनों पीढ़ियां मिलकर भाई हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, स्वच्छता हो, पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा हो, मतदान हो और सामाजिक जागरूकता हो, ऐसे अगर अभियान होंगे तो फिर तो क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे अभियान होंगे, ऐसे सब जुड़ेंगे तो ये बात होगी सोने पे सुहागा, क्यों?
0: जी, और भाई बुजुर्ग अपने हुनर और पारंपरिक ज्ञान को युवा तक जब पहुंचाते हैं और युवा उसे आधुनिक बाजार और तकनीक से जब जोड़ते हैं तो संभावनाएं अपरिमित हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए हम तकनीक की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करें तो अब एक तकनीक की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरह से, कई लिहाज से आसान बना दिया है, और आज स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे अछूती नहीं है। ई संजीवनी भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन्हें हर बार अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ऐसी डिजिटल सुविधा उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है।
0: इसके जो आधिकारिक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक घर पर बैठे मुफ्त ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो के जरिए डॉक्टर से परामर्श और डिजिटल पर्ची यानी ई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकता है।
1: देखिए इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, और ऐसे में उन्हें भी घर बैठे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और अस्पताल की लंबी लाइनों से में खड़े हुए बिना मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे डॉक्टर से संपर्क ये कर सकते हैं।
0: और ये जो ओपीडी है और ये परामर्श सेवा है ये नागरिकों के लिए बिल्कुल ही निशुल्क है, और इसमें प्रतिभा एलोपैथी के साथ साथ जो आयुर्वेद है जो हमारे भारत का ज्ञान है स्वास्थ्य का, और होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर ये भी उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए इसमें आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हालांकि गंभीर या आपात स्थिति में देखिए हम भी यही कहेंगे और सब यही कहते हैं कि चिकित्सक से सहायता लेना जरूरी है, तो ऑनलाइन परामर्श को हमेशा परिस्थिति के अनुसार ही इस्तेमाल करें।

0: और रश्मि जी देखिए कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और घड़ी ने हमें इजाजत अब नहीं दे रही है, वो कह रही है कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति। तो इसी के साथ मुझे यानी प्रतिभा को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आईफुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.21 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है और आज कलाकार बेमिसाल में जिक्र उस कलाकार का जिसके पर्दे पर गाए और फिल्माए गए गीतों से आज भी कश्मीर के पर्वत जागृत होते हैं, चिनार के पेड़ झूमने लगते हैं और शिकारे पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को उन जैसा समझने लगता है। बर्फ से ढकी हुई वादियों में बर्फ पर फिसलते हुए पर्यटक के मुंह से एक ही आवाज निकलती है।

जी हाँ, जंगली कहो या दीवाना, जानवर कहो या राजकुमार, बदतमीज कहो या फिर प्रोफेसर, लाट साहब कहो या विधाता, ये सब एक ही शख्स के अंदाज थे। वो थे हम सबके चहेते शमशेर राज कपूर, जिन्हें हम सब शमी कपूर के नाम से जानते हैं। आज कलाकार बेमिसाल समर्पित है शमी कपूर साहब को। फिल्म जंगली का गीत आपने सुना, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीत लिखा शैलेंद्र साहब ने और आवाज मोहम्मद रफी की। शमी जी का जन्म 1941 में मुंबई में हुआ, लेकिन आपके बचपन का अधिकतर समय कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता, जहां इनके पिता पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर स्टूडियोज में कार्यरत थे। इसके बाद परिवार वापस मुंबई आ गया और तत्पश्चात शम्मी साहब की शिक्षा और दीक्षा यहीं मुंबई में हुई। बाद में आप अपने पिता के पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। शमी जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1953 में बनी फिल्म जीवन ज्योति से की, लेकिन उनकी पहचान बनी फिल्मिस्तान की नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म तुमसा नहीं देखा, जो 1957 में आई थी और जिसे देखकर हिंदुस्तान के श्रोता कहे उठे, वाकई तुमसा नहीं देखा।

जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल शमी कपूर साहब पर। और शमी कपूर साहब की अगर बात की जाए तो शमी कपूर साहब की एक फिल्म हमें याद आ रही है, 1963 की फिल्म शहीद भगत सिंह। शमी कपूर साहब के शुरुआती दौर की प्रमुख फिल्मों में से यह फिल्म थी और जिसमें उन्होंने महान क्रांतिकारी भगत सिंह का किरदार निभाया था। शमी साहब के करियर में यह भूमिका इसलिए भी खास रही।

क्योंकि उनके चुलबुल है और रोमांटिक अंदाज से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में उनका एक गंभीर और देशभक्ति पूर्ण रूप दर्शकों के सामने आया। फिल्म का संगीत भी बेहद यादगार था और मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने इन गीतों में देशभक्ति और जज्बे को एक अलग ही ऊंचाई दी। तो आइए आजादी के इस जज्बे को महसूस करते हैं और सुनते हैं शम्मी कपूर साहब की इसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गीत। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में और संगीतकार हैं हुस्न लाल भगत राम।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन

0: पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: 1:25 और ठीक 55 सेकेंड। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, और देविका है आपके साथ। और बात शमी कपूर साहब की, फिल्म तुमसा नहीं देखा के बाद शमी जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में फिल्म जगत को दी। तुमसा नहीं देखा के बाद आई एक और बेहतरीन फिल्म दिल दे के देखो, जिसमें उनका स्टाइलिश प्ले बॉय की इमेज जो थी वो स्थापित हो गई और उन्हें भारत का एल्विस प्रेस्ली कहा जाने लगा। यहां तक कि उनके किसी प्रशंसक ने ये तक कहा था कि शमी कपूर भारत के एल्विस प्रेस्ली नहीं है, बल्कि एल्विस प्रेस्ली जो है वो पश्चिम के शमी कपूर हैं। और अगला गीत इस बात का प्रमाण भी देता है। 1969 की फिल्म दिल देके देखो से उषा खन्ना जी का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज बात शमशेर राज कपूर की यानी शमी कपूर साहब की। फिल्म तुमसा नहीं देखा से पहले शमी साहब ने कई स्त्री प्रधान फिल्मों में तब की समर्पित महिला कलाकारों के साथ काम किया, जैसे कि 1953 में बनी फिल्म रेल का डिब्बा में मधुबाला के साथ, लैला मजनू में नूतन जी के साथ, ठोकर में अभिनेत्री श्यामा के साथ और नलिनी जयवंत जी के साथ फिल्म हम सब चोर है में। दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन 1960 के बाद शमी साहब ने तीन नई अभिनेत्रियों के साथ काम किया। ये तीन अभिनेत्रियां उनके समकक्ष सफलता की ऊंचाइयां छूने में कारगर साबित हुई। ये अभिनेत्रियां थी शर्मिला टैगोर, राजश्री, आशा पारेख और सायरा बानो। शमी साहब का स्वयं के कथानुसार उनकी सभी हीरोइंस में से शर्मिला जी, राजश्री और आशा पारेख के साथ काम करना बेहद सरल रहा। सुनवा रहे हैं आपको 1965 की फिल्म जानवर का ये मस्ती भरा गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, बलबीर और मोहम्मद रफी ने, शंकर जयकिशन जी का संगीत और शैलेन्द्र साहब का जादू।

0: जी हाँ, वो चुलबुला अंदाज, वो मस्ती और वो डांस का स्टाइल भुलाए नहीं भूलता। और शमी कपूर साहब के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
4: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
0: जी हाँ, यकीनन जब हिंदी सिनेमा में चुलबुलेपन, शरारत, शोखी और बिंदास अंदाज की बात होगी तो एक ही नाम अपने आप जहन में आ जाता है, शमशेर राज कपूर यानी कि शमी कपूर साहब। उनकी अदाकारी में ऐसी खनक थी जो पर्दे पर आते ही माहौल को खुशनुमा बना देती थी। चेहरे पर शरारती मुस्कान, आंखों में नटखटपन, संवाद बोलने का अपना अनोखा अंदाज और नृत्य में वो बेफिक्री शमी कपूर साहब को बाकी सितारों से बिल्कुल अलग बनाती थी। चाहे इश्क में डूबा हुआ नौजवान हो, दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ आवारा दिल हो, या फिर जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाला किरदार, शमी साहब ने हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी है। और उनका अंदाज सिर्फ अभिनय नहीं था, वो एक पूरा मिजाज था, खुश रहने का, खुलकर जीने का और मोहब्बत को शरारत के साथ निभाने का। और फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत हमें याद आ रहा है जिसमें वो हेलन के साथ हैं, और क्या बेबाकीपन है इस गाने में, सुनिए। बड़ी वुमन का संगीत, वज्रू सुल्तानपुरी साहब की बोल आवाज, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

मिली में 107.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगा एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 14 तारीख दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुपतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यम्फो और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, मुनपा में उद्घोषक हैं श्री संगे टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मेरे मेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से

0: जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव

0: याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाला।

0: रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात नरेंद्र चंचल से चंद शिव भक्ति भजन। तो चलिए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ। तो वो तो हमारी शरण के लिए है। रोहतक में और ये जो जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पर पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन कहते हैं। तो वो मीठा ऐसा है तो वहाँ तो जात लोग पड़े हैं, शायद अहिंद लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे है। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है कि वो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम देना है हम लेंगे। और पीछे वहां भी देखो हक की बात आ जाती है, हक से नहीं, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए और नहीं तो भूखा रहे। और दवा या दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबर मानता हूँ। तो अंग्रेजी स्वतंत्र चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए, हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है।

उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम उनको तो अभी गुलामी में लेना चाहिए कि हम मर जाएं कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें? अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है। क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और इतना काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल तब पीछे इसी बात पर जा सकते उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिचंद को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मजलिसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पढ़े लेकिन पढ़ते हैं, और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। पहले तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें? तो मैंने आपको ख्रिस्तियों को तो कहा, अब भी हरिजनों पर, और अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे? हम सबको दंड दे सकते हैं, और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था? ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है उनको तबाह होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शान है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो कई कथा बोली सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमने बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है, प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब लोग ये नहीं किया है, करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है, तो जिसने उसने हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए है। तो मुझको ये कवि कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े? तो जब तक हम ऐसा करते थे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए? तो हमको समझना चाहिए तो उन पर हमारे ऐसे जुर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे जीवन में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मानो ख्रिस्तियों को क्योंकि पहले से करो साहब तो पीछे हम यही तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे, अहिंस स्थान बनाएंगे, और पीछे हमें एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है ही, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है ही नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म की रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना, तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध को लिए हो, और वो सब प्रजा के लिए है, तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए तो शूद्र तो वो सेवा करे, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शूद्र का ही मन सेवा का ही काम करना, सब सेवा है, जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है, लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है, उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा, ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए उसका

पढ़ लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसमें से पंचम भाव पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है, हमारे हम धर्म से हट गई इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार। आइए अब सुनते हैं नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद शिव भक्ति भजन।

नरेंद्र चंचल के इन्हीं शिव भक्ति भजनों के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे वांकप वांगसु से चंद आधुनिक वांगचो नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत वांका फांसू से चंद आधुनिक वांगचो नगमो का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे वंक वंशु से चंद आधुनिक वंचो नगमे। इसके साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन तवांग की सदस्य एडवोकेट सोनम जांगमू से कचरा प्रबंधन विषय पर दिए एक जागरूकता संदेश।
1: नमस्कार सभी को, मैं एडवोकेट सोनम जांगमू, मेंबर WWA तवांग। आज मेरी बात कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग सभी को एक संदेश देना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि WWA पिछले 3 वर्षों से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे ये निवेदन है कि आपके घर में जितने भी ड्राई और क्लीन प्लास्टिक है वो आप हमारे ऑफिस में आके दे सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है मोनिल विद्या निकेतन के बिल्कुल पास में है, तो आप लोग वहाँ आके अपना प्लास्टिक दे सकते हैं, क्योंकि हमारे तवांग को क्लीन और ग्रीन रखने में हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। और मैं टैक्सी यूनियंस वालों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप अपने टूरिस्ट को हमारे जो पहाड़ों में घुमाने ले जाते हैं, तो काइंडली आप अपने कार में एक

0: टिफिन रखिए या फिर एक प्लास्टिक रखिए, जहाँ पर वो जो खाने का सामान लेके जाते हैं उनको वापस उस प्लास्टिक में डाल के लेके आए और वो हमारे ऑफिस में आके वो दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ों में कचरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो पहाड़ों को साफ रखना हम सबका जिम्मेदारी है। और प्लास्टिक जो है एक ऐसा चीज है वो हजारों साल तक नहीं पिघलता है, तो इसको यूज करने के लिए हमें बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा तवंग जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, बढ़ते टूरिस्ट के कारण प्लास्टिक का भी आना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं वो बिल्कुल भी नॉन फंडेड है, मतलब किसी भी तरह का हमें फंड नहीं मिलता है। वो हम अपने ही कंसर्न से, मतलब हम एक कंसर्न सिटीजन होने की वजह से हम ये काम में लगे हुए हैं। और हमारा जो WWF तवंग है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमें प्लास्टिक डोनेट करते हैं उनको एनकरेज करने के लिए हम अपने पॉकेट से 10-10 रुपए का साबुन देते हैं। तो ये सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे तवंग को क्लीन और ग्रीन बनाएं। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे WWF तवंग ने अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 विलेज को एडॉप्ट किया है। एक है शोबस्ती, दूसरा है मंडलिंग, तीसरा है चंगबू। और इनके साथ साथ हमें ऑल बाजार और न्यू बाजार के भी कई सारे दुकानदारों ने अभी प्लास्टिक देना स्टार्ट कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आके अपना जो घर में जो प्लास्टिक यूज करते हैं उन्हें क्लीन और ड्राई रखें और हमें डोनेट कीजिए, हमें बहुत खुशी होगा। हम वो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करते हैं अपने ऑफिस में, और सेग्रीगेशन होने के बाद में आप लोग सभी को पता होगा नुमला में एक झमसे गसल करके एक स्कूल है, वहां जाके हम प्लास्टिक को डंप करते हैं। वहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्लास्टिक को रियूज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक को आप जहां तहां नहीं फैलाएं और जितना हो सके उसे ड्राई रखें, एटलीस्ट वेट नहीं होके हमें दे सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप कम से कम प्लास्टिक को यूज कीजिए। और अगर आप कहीं दुकानों में भी जाते हैं तो अपने अपने घर से कुछ बैग लेके जाइए, ताकि हम अपने घर में कम प्लास्टिक ला सके। और अगर आप प्लास्टिक यूज करते भी हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप काइंडली आपने वो जो प्लास्टिक है उसको जमा करके हमारे ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा जो WWF मेंबर्स है वो महीने में 2 बार प्लास्टिक कलेक्शन के लिए जाते हैं, 15 तारीख या फिर 30 तारीख, दोनों में आते हैं। तो आप लोग हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका प्लास्टिक कलेक्शन कहाँ से करना है, तो हम लोग खुद आके आपके घर से प्लास्टिक लेके जाएंगे। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन तवांग की सदस्य एडवोकेट सोनम जांगमू से कचरा प्रबंधन विषय पर दिए एक जागरूकता संदेश। इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए सिमरन फिल्म से गुरु रंधावा और जोनिता गांधी की आवाजों में, बोल वायु के और संगीत सचिन जिगर का।

अगला नगमा पेश है शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों में। दोस्ताना फिल्म के इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से भी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा नगमा, स्वर अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के तथा संगीतकार विशाल शेखर। श्रोता, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार और संगीत ए आर रहमान का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए सत्यमेव जयते फिल्म से अतीफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रोचक खोली ने।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स फिल्म का नगमा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। अगला नगमा सुनिए बेनी दयाल और शिफाली आल्वारेस की आवाजों में। ये जवानी है दीवानी फिल्म के इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

बधाई दो फिल्म से पेश है अगला नगमा अरिजीत सिंह और रूपाली मोगे की आवाजों में। अमित त्रिवेदी द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। सूर्यवंशी फिल्म के इस गीत को लिखा है रेशमी विराग ने तथा संगीत से संवारा है जैम 8 ने।

केसरी फिल्म से सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा अरिजीत सिंह और अजीज कौर की आवाजों में। बोल एवं संगीत दिया है तनिष्क बख्शी ने।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अभी आप क्षमा करें। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। अहमद अनीस के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शरीफ तोशीनी।

अगला नगमा पेश है फनी खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

लवाजकल संसवी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा अरिजीत सिंह के आवाज में। गीतकार इरशाद कामिल और संगीत दिया है प्रीतम ने। इसके साथ ही श्रोताओं फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल। राग है तुमरी खमज़।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तुमरी खमज राग पर श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से खयाल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। देश के हिस्सों के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला प्रशासन ने भी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप ए, बी और सी के लिए एक समान पात्रता मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया। जेम्स ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के तहत अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित। भारत में कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और भारत ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक

0: गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अग्निशमन सेवा, होमगार्ड

0: पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर में सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देशभर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप ए, बी और सी के सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए एक समान पात्रता मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके तहत आवेदकों के लिए 3 अनिवार्य शर्तें तय की गई है, जिसमें स्थायी निवासी यानी इंडिजिनस एपीएसटी, राज्य के मूल निवासी एवं एपीएसटी की पात्रता और इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेज यानी स्थानीय जनजातीय भाषा का ज्ञान शामिल है। कैबिनेट ने प्रिंसिपल और डीटीएससी के पदों पर पदोन्नति के लिए एक बार की विशेष छूट के तहत 2 वर्ष की सर्विस रिलैक्सेशन को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए भी एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट तथा डीआईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी दी है। हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत देवमाली में भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली में जनता की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई है। कार्यक्रम में एक विशेष बाइकर्स रैली भी आयोजित की गई। इसके अलावा विद्यार्थियों ने 150 मीटर लंबे राष्ट्रध्वज को गर्व के साथ लेकर जनरल ग्राउंड से एनसीआई ब्रिज तक तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन खोंसा में भी किया गया। जेम्स ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के तहत अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला डाइट चांगलांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांगलांग और रंगफ्रा कॉलेज चांगलांग में आयोजित की गई है। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को जेम्स ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के बारे में जागरूक करना और उन्हें राष्ट्र स्तर से क्रिएटर चैलेंज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस दौरान विद्यार्थियों और फैकल्टी मेंबर्स को अपनी रचनात्मक प्रविष्टियां जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए गत 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक सबमिशन पीरियड निर्धारित की गई है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही तवांग जिला प्रशासन ने आज उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर वर्ष 1947 में भारत विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों के अनगिनत लोगों, विस्थापित हुए परिवारों और झेली गई अल्पकालीन पीड़ा को याद किया गया। पीड़ितों और इस त्रासदी को झेलने वाले लोगों को सम्मान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद भारत विभाजन की दर्दनाक घटनाओं और मानवीय पीड़ा को दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।

0: तेजू विधायक डॉ. मोहेश शाह ने ईस्ट सियांग जिले के मबो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC और एक ऑपरेशन थिएटर OT यूनिट का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने उम्मीद जताई है कि मबो CHC में स्थापित OT से जिले के लोगों को चिकित्सा आपात स्थिति में काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैनिंग यूनिट और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जैसी सुविधाएं आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि OT शुरू होने के बाद मबो क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर दराज के स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ ही चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए पूर्वी अनुसूची से संबंधित प्रश्नकालिक अधिसूची जारी की है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल शामिल किए गए हैं। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में 4 दिन तक आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। भारतीय दल ने अंडर 23 और सीनियर प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के चौथे और अंतिम दिन सीनियर भारतीय फेंसर्स ने 6 में से 5 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने विंकलन स्वाप ट्रॉफी भी जीत ली है जिसे कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले देश को प्रदान करता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ईव ऑफ द 88th इंडिपेंडेंस डे। The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages. On the regional channels of Doordarshan, Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. After the showering of the flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. The government has invited 100 beneficiaries of the PM Vishwakarma from the Delhi NCR region as special guests to witness the 88th Independence Day ceremony at the Red Fort, Delhi. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises informed that the beneficiaries will also be presented with souvenirs as a token of recognition and appreciation, followed by an interaction with officials of the Ministry of MSME today. 21 officials of the Central Bureau of Investigation have been honored with the President's Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day 2026. President's Medal for Distinguished Service have been awarded to 6 officials. These include Sobha Datta, Assistant Inspector General of Police, Manoj Banerjee, Additional Superintendent of Police, Gini Rana, Additional Superintendent of Police, and Sanjay Kumar Samal, Deputy Superintendent of Police, CBI. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebration. The DMRC said metro services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable of the day. Today is partition.

Oh,

Sous-titrage Société Radio-Canada

Kuzi

见见见人西天的念珠不是今年落几天送你落到恰见的明朝这边推到你但是永远都在想一切真能当送教授大家

0: एकदम कम्बिनेशन नंग नमदा या इचे उमका लोक्यो जिगे उचिन नंग बिरे लीग मैच कने कन या हलम लिंगे का रहा इचे मैंने स्कोर ना है मंशो या हो बिर रंग नंबर टीम नंग से मंशो स्कोर या इचे आर्या दुंग ना या दत सक्ति बिर तुम ग्रोलु दी गई तुम दुखचे प्लेयर ना तंग उचुक लोकल प्लेयर इन ना हायर प्लेयर इन ना दुखचे टकता पाचिक नी उच या पुले दते शत में मोतो मोनी नहीं का त नगर चित सुडक्शन इट की रंग तई मुर्स
1: Les dan dong mena shanti le magi nyimbol tadega de menang sodi ya nyimbol di rodo
0: bawde
1: tega mena tim nomda ne na iki teit nyoji de it shuru la tapi ti shot nyoji teit iula ite zga shat me motong di

0: 이제보다 균형이 된 거다. 샷 뒤에 뭔데, 그래. 어때가 면 안 돼? 이제 숨이나, 아, 소소나, 면 소지, 인보는, 이제 그, 당가당, 그, 최경수마, 나가 예산으로 드로에, 어떤 액션들, 어서, 심사김대 어떤 가이키면에 그런 데 액션들. 노골다, 가이가니에 뭐, 데디 바치는다. 단 노골다, 본가니, 집기스 바치는 수수배토냠.
1: 덤벳크세 칩게스 나탕 타왕 에밀레랑 로둠부르 아 독치 나탕 타왕 에밀레 남게스링 사랑 칩게스 팀부르 이지 나탕 게스트 오브 오너 냥 나탕 디시 매덤 이지 스페셜 게스트 냥 마운티 넘버 서 스페셜 게스트 냥 나탕 그 브리게디어 서 냥 넘버 서 이지 에스피 서 이지 나탕 제피씨 서 디에스피 서 이지 타왕 나탕 그 제피엠 다 독치 녀 플레 서 독치 제피엠 마운티 용도 서 나탕 룸부 타왕 나 제피엠 노디 가포 옹쿠니 시인이네 서 나탕 로 아리아둥 녀 플레 제 나탕 오즈 목토 컨스튜언시 용도 서 또 이제 서 나탕 목토 제피엠 서 예 펩토 서 이지 타오 킷픽 제피엠 서 타왕 제피엠 매덤 이직 타오 아당 다프팡 진우 게 시인이네 서 독치 다프팡 진 팀 옹도 다프팡 리더 마운티 옹도 서 이담 제 나탕 제피엠 이지 나탕 다 सब ती मैडम ही कंफर्म तो माय लुसी इंटरेस्ट मैडम ये जोंग दी नी संग तुम लुमलक एमएलए मैडम
0: लेस टूर्नामेंट कंफर्म छे चोकमी जीबे ने योर दे छेतम बोल सिंदर छिना आज तक दा सिटी ते समय जाम ने खोर गई स्टेडियम ने चोपजी उतन यापोता उसमें न टेंडर फाइनल सिनिंग लेना 15 हाउस लेना दी मिना जेगा चामरी जी को तो स्टेडियम रेला इजापोता उतन चामची में तो मत होना
1: टूर्नामेंट गोमुचुक ते नाची ने संग युज कोर हालम दी ओचो मतराई सर सरिनंग दम
0: नौला
1: एचे सर न्या चेंगारी ता चोक दोन एमएमटी नतन सोशल सर्विस सेक्रेटरी से वीडियो दी चेने सर सिंतरे नतन ओचो ता तावंग जिक मिनांग से ता उच सिविक सेंस यो ओचो हालम दी दोनु गोर को नि सर ता ओय यक पुले सर चोक पचो बिने सर दुखची बोतल प्रिशो बाजी घातंग नतन ओचो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सी बैंड यो बेस इ चोक प मुनुला दी राई सर छिनारंग मिनांग जासु ख्यासु चोनंग वत इजिक घर गे नै नै चे दुइगिन घर सही होइते ने सर इत न्या नतन थैशो चे नतन मोन हेरिटेज स्कूल लुक टु बुजनांग या राई लारो या इज जुजेंग नतन ओचो बुरमिन फुटबॉल टीम मंग ती नंबर सर बिरिया राई लारो या घर से इजिक घर तंग या घर मास सोशल सर्विस ती या ओ सर स्टेडियम गा चंग मचे सुनो त उजुक थों घर या उजुइगिन सर नगर त मि मंग ती जोमि मुर सर एजे मिमंग गा पोशी उत रिक्वेस्ट दिनी सर की बिरि नतन गो ते यु ते सर चोक प मेचे जेर नि
0: ले सोला कोंजरिसिलांग दागादा इंजिगा इना हायर प्लेयर नि रमोरे द पिजोक मदांग नियर तो इना पुनापराक तो शेया इना त पेनंग डेविने एडिशन तो इना गंजे दांगादांग डिस्ट्रिक्ट पिजोक को द टीम टेगा हायर प्लेयर बिबलि रतो मेरे इजबोता उचो हायर सिस्टम चो द बादिसि निनन दा उचो तिरन बेनका थोरि मुनु याने देशोरे गिमबो ngatang uchu ko pujuna xia sa xinjuk ko ga mosho da imbur udun na yakan la ni badisin de pisok higher player di rotu ne na dakshu di ma ge re rotu ne na ngatang uchu pujuna ga yamina football ga dakshu ge imbur birba xia ti birba xia lobia ji ngatang dakshu ge imge la ro dur ija boda konjere xila inak tu ga ga ya ni u higher player so ne ne ji ngatang xia khepsang je zini u ki ngatang jong je zini ija boda na ma yijol
1: ta uzu higher player nyok pole sir da ngatang uzu shubuchik sur oi band ye uta higher player molong uchi nge ut lokyo imbur ta ut ngari band ta mayem bur sir shubuchik sur ye higher no rang ra imbur ngatang uzu tawang ati pole sir ngatang uzu higher limit la din imbur makir higher yak chowu ji blin imbur shen yuk ji sum imbur te ichik nenga sir baki ngatang प्लेयर गेट सोंग अतंग अतंग ओचो लोकल प्लेयर अंग शंदुमबुर तो इत्सो द जुबुजिक थ्रो इचा क्यु किजि को बैंडी को इत मिनुमबुर सर तो उत्रम निमबुर हायर ब्ली मंगाय या जिक अतंग सुम शेन युक नोचि इत्रम निमबुर इ द सर उजु अतंग से फायदा जिनि इन सर हायर प्लेयर या ओचो गी द उत प्लेयर सो नंग एकदम प्रोफेशनल दुखचे सर अतंग फुटबॉल टूर्नामेंट यंग प्रोफेशनल प्लेयर्स मंगदा होनि हायर निंगा ना कंग अतंग लुम्ब फिचोक सुइन ना हायर या ओइ शेयर थों ओइ रेते ने सर दुखचे सिंतरे अता इंडिया प्लेयर इंडिया अंडर 19 शनु हिजिक आईएसएल शनु आई लीग शनु प्लेयर शतानि तो बिरदम जुया गतांग बुचनांग जिक गेम एक्सपीरियंस रसु हिजिक तांग गतांग बिरदम जुया गतांग उच प्रोफेशनलिज्म चांगिक थिरो दोर सर इत कि गतांग फायदा रसु ले गतांग नुकसान न्यो चोरे इत ngai tisu ga khon zikati mono sir
0: le sola ichi da gatang sam thon mina bir dakshu na da ma che ngata shin yuk dine ne bir klak yo de ngata lob yuk ko gop no me ore
1: im sir shin yuk ti mino sir it da ma che ngatang lifestyle एजंग सामे खामजिया ने क्रिन एक्सरसाइज नंग इजिक गेम शन छ सख सुख सिय कोइनी गेम मशन तिना सिय कोइनी इदंग गा मतंग डिसिप्लिन लाइफ चो मतंग जंग युक्ति रो दुर त प्रोफेशनल प्लेयर नंग तंग
0: सो तौ टीम नेशन द तौ जों गा हायर प्लेयर मार्केट माफ यो नंबर द टीम मजे गा बिना हायर प्लेयर नंग द नंबर सिंदरे उ द हायर प्लेयर नंग केटा थंदा थी त तौ सो द पोपा चिन एफसी नंग जैसे नंबर 10 दिनि में
1: लस
0: तौ तिसम केटा नि में उ सु तबी 기타 대주라고 나지가에는
1: 더 우츠

0: तो केटा थिंग जो दिसिंग इन द बी ngat अरुणाचल प्लेयर दी इमर्स अरुणाचल प्लेयर दी प्ले बी मार ngat मो आईएसएल का मुंबई सिटी न्यू का शंदमपुर यामर नि कुम न्यू सो त इट प्ले या प्ले दी ngat फिचो प्लेयर ला खोन न दुख चिंग ngat तवंग टाउन क्लब का प्लेयर्स नंग नंबर सर ए जे ngat जर्सी नंबर दी ए जे जर्सी नंबर 10 नो चित इ जे ngat अंडर 19 इंडिया टीम का शनमपुर सर इजी तांगशुम ngat चो साफ ngat यूपीआ का इत ngari kandak rang yakumpur ए जे इंडिया टीम का बी टॉप स्ट्राइकर हिमपुर सर इत प्ली क्या बोलते ngat आर्या दुंगा दे डायमंड हार्बर कक त इत चित आईएसएल शनमपुर दो जक्सेरा इजी प्लेयर ओ चो होंग नंबर सर त ओया पुले ये तांग प्लेयर यो नम द बीजिंग ए केटा गयो ने तांग ngat अरुणाचल बुजे थी या गा पिंग मोशि सुनो छि की इजी दोनों गेम या दुख छि नम द शन इजी फाइनल यो इजी सि हलम दि केटा दि गेम सर
1: लेसो लेसो द देशी ओ चो तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी निंग मेरा लाम लोटे सो इंडिपेंडेंस कप 2026 का चेयरमैन कुंजेशिला देश ओसो कुंजेर मा फेपनाम भी इजिकोदा देश ओसो बिना मिक्स फिर से शुरू होना जी गए मुनु निंग टीम निंग रेफरी हिमपुर कोच हिमपुर मैनेजर हिमपुर इतना प्रेगा हम कोलों मुनु या जो नमदा या टेडीप नंगा या मीना दस सक टूर्नामेंट नमदा रहेंगे तंदोर इन मीना फाइनल का इंडिया चुका जिगा sitting in your own tamagolo munu ya menajik ta ti te go so tshir go so chi luk sai me ore ija boda no ye namda re yiku chingari oye rebi yadu ija boda konje re shila deshe na ngai no ni tong khali krok meraglam lo te geso independence cup football tournament kor sega na ne so nang bi chuna je thu shin yishur
0: thank you sir
1: ije ku do zin ni bchi ta ozo gishi to luk tsringla chada shur go so chi de zin yina jagar himalaya nalanda nabe sorgen lhensok si koti shuya not chinda ke bakter chigro imbur sangyemi imbur ija boda ozo de tawan gon bak sor go choya chinga da ozo da so se ye na tung teng se ye na na chong bon zume imbur ta ozo ke be phodang sar be yang nomur ozo sak che gon bak sor chogi gomre de na yu ko jerim de thank you ni ta jerim chit pa na kai ga no inam chu ozo da su su ngam ji roi ki nam iji ko da ozo gi shila se ma na ge bur ya boda gi shila da na tik jerim ko nga na sha mu ji re na तदंगे शुसुंगो तो सो जगर हिमालय नलंदा नाबे सुर्गन थनसोक सो कैश सोबनारा चुगु इनम इजुगु दत नेगप का कैपजे किमेरि मचेते योदु सोजो इनोक्शन इजाबोदा चोजो ता नेदु न सुइ नाओ इनम इजु सोबोबे न गैशनारा गो चुगु इनम नदा उजु को दुदि थेगा देन नाबे इजुला
2: नसला आदा देश सो कुसेलेरिम सेंगे योंगसो शि तशितले इजाबाता तंगर हिमालय चोबा जगा हिमालय नलेंदे नंबे सुगेन हेजो नेता सोबदि नंबर ओ सोबजि गेता जो गोटि यक्सि इ देपचे दांग गतन सने दसंका खशेदिया जुको गदो जोता सोबका खशेदिया देखवा नमदि बिया तो या जिक बासि गेता गोटि यासे ता नंग तेरि जुवजे तो गो बक्सुर ता तो जोंगा दांग ओल बजलेन जावरम से फोटा सते दांग गतन छु युकुमदि दिनेदि सेरिमदि निगु नंबर ओजाबदा तौ जन्याम दे ब्याकन चेंग आ तौ थासा इंबुर ता जान शोगलिंग थासा इंबुर इजु आ ता किमे गोन ब इंबुर इजु बदो छोब जंग आ तंग मन मिमा छोब नो इजु आ तंग ता बिन मोबा फाउंडेशन छोब नंबर इजु ता ता फाउंडेशन ने दे छोब दे नंबर इजु आ ओदो दे बुदा बा का छोब सार बे दे नंबर इ छोब बा देवा न्याम दे ब्या तंग या इ बा जिगे ता गोटिया तंग बुर याबो ता उता दे गा तंग जगा हिमालय नलेन दे नंबर सुयेन हेजो नि गो छोब जो कई कोचो नि नंगा ता निदों चिपजे जे कोचो गुमबुर ओ निदों चिपजे जे ता कोचो गो सिया ता नादा गा ता तो सो ता वा फाउंडेशन ने या ओ छोब जिक छों दे नंगा ता बेदांग समजों ओ दो दे रस इजे ता मिनांग ओ एदी ता मो दो खरे या इसु सुरा या ता नंग छोब जे ने दी कोचो गुमबुर ओ छोब जो कोचो यास्ते नादा छोजो जिंगा ता ता लोजे रिमो जिन ने सुदों ब गा ता हिमाचल लोजे रिमो जे बेनांग ओ छोजो नादा गो जिंबुर इजिता जुबजेदा दादा थोबक सोजोदा किनिरिमसि बिना इमबुर इजावाता बेरु उनादा निदों जुबजेजे सोबोसो गोजोया इजिबेनांगादां एजारमजे जगाशि जुबज जारमजे जदा नेमजे तुनिबदनां सिनेन उता सोबोजो मिजुसंगादा बेनालेनदा नोसुदो आदा हिमालय रिजिंगादा मिना गोंदथासंखागादा लबजोया युक्ति नायनेंगादा गोंदथासंखाना शब्दला वयागुमादो नेमजेगादा तिंगस नंबर छे सो दले दे छे सो ने मि जलो जो याई दी मिसे दे मुनम बुर इ जवा दे जारम जे से कलब यो दे नंग सारम बुर ता ता ओ जे लब जो या मे ता उन दुन तिने दे छे को निंगे ओ छि सुन या दे बिरु छक बजो मि उन दुन दी गा नि या जे नंग छक बजो या जारम से या ता जगा छु जारम जे ने मि जे थु नि म नंग ओ छक बजो म्यांग जे ता ता जारम छे से ना ओ गिन बुर ओ जवा दा ओ छक बजो ने मि जे गे दिम दे छों दुन बुर ओ जवा दा नंग गा दो जो ओ छक बजो ता गा जे मियोजो इजिमसिनदा दा गादा देउजो नंगा ताउ गोनबासो दा गादा उजो जेबे फोटा मा सखदि छुयो गुमजे या गोसो दा

उन्हें क्रमा खेने चीचे सुरेश वादकर से दोनों लेरिम वंदना का हिंदी चेतन समेत इमर नगर नालिंग चुजे निश्चे ग्यागर रावंग रंजन तपिया लो खेबी करो दुजिन कप का सिलन कुशब नन मोदी से केस दिल सर्प का फोरंग मार्प का केदार शुरिया क्यों शेल कलप सुजे नंगो ठेकर तो ज्ञान जुसो सनासा इजक शुचे समाज प्रभात निंग इजक शुचे इंजिका सिंगुर निंग इंजी सिंगुर तुसुक शुचे जंगशर नदिक सिंगुर समेत इमर इजक शुचे नगर नाले चुसे दुगुचे नदी अरुणाचल प्रदेश काक चिख्या प्लचिन कुश पेम खंड से ग्यागर रावंग राजिन तुचिन थिंग खेब्रिमा कपका नदिक मिसी नाशल कलप नौ सनासा लंगिना दा नगर कुजुक लेरिम निंग सुजोर सनासा नगर कुजुक चुजे नेचे आकाशवाणी तिलक ज्ञान सुसो ना इंजिक सिंह चुजे नैनी क्रम चिलंगे हिंदी का सिंह समय तो इमर चुजे नैनी फिजा चे लेरिम वनना नगर नुक चुजे लेनिंग कर्म खिली चिलंग चे नगर ग्यागर रंग रंजिन तुचिन थिंग खेब्लिमा जनरल पेरेड ग्राउंड तवंगा सुसे जुसुक रेडियो रिपोर्ट समेत इमर सुसे खुनी कर्म खिली चे येदुन लेरिम नगर नुप सुसे गेचे ग्यागर रंग रंजिन तुचिन थिंग खेब्लिमा

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:12 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ पलों में यानी संध्या की 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए आमार रिंचिन सांगमू और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन। आज शाम 7 सुनिए 80वां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। उसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे माननीय राष्ट्रपति जी के राष्ट्र के नाम संदेश का श्री लोबसांग तोपदेन से मोनपा अनुवाद। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45

पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए उपकार फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉज स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा News@9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 15 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल सुबह 6:40 पर 80वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित हमारा विशेष प्रसारण आरंभ होगा। सुबह 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 7 बजे आप सुन सकेंगे 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संदेश, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। तत्पश्चात सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित समाचार संध्या मॉर्निंग न्यूज तथा नॉर्थ ईस्ट न्यूज। और कल सुबह 9 बजे आप सुन सकेंगे 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का प्रदेशवासियों के नाम संदेश, जिन्हें हम आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित करेंगे। रोजाने की तरह कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए मनहर उदास से श्री लक्ष्मी भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक निशी नगमों का आनंद लीजिए बैंगिया हेमंता और ताना तरम तारा से कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा चुकी से एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए राजी फिल्म से अरिजीत सिंह, केसरी फिल्म से बी प्राक, 83 फिल्म से अरिजीत सिंह और स्वदेश फिल्म से एआर रहमान की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए फिल्म जगत के चंद देशभक्ति नगमे कल दोपहर 3:50 पर। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए पंडित हरि प्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेरी में सुनिए मेनपा सिंह रूप से छोगे मिड्राक उपन्यास का तीसरा भाग कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर मनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनरल परेड ग्राउंड तवांग में आयोजित समारोह का एक रेडियो रिपोर्ट। लेरिम से रात शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन देरी में सुनिए गेन थुप्तन सिंह और छात्र भिक्षुओं के आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए जिला अस्पताल तवांग के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तिंजन कुंगा से मातृत्व में प्रसाव पूर्व, प्रसाव कालीन एवं प्रसाव उत्तर देखभाल के महत्व पर हुई भेंट वार्ता। दोनों ओर गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज कल शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए महेंद्र कपूर के एक देशभक्ति नगमा।

रात्रि 8 बजे सुनिए 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष संयुक्त रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित इस पॉज स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: 랭지 나갔다 시든 레리마 샤르육 아머린진 사무 스크리소 균작 손바 겹도 심기 간단 라게마 롤마 겨이 잡던 보이도 전해릭 되바 선나무 랭지 노담치 아가시바니 따왕 가진주소 대신업대 문박 레림바나 자상투두 랭지는 노딕 주세 니송도 다 유불 레림 야가 라왕 라진탑야 노걸레 로 케블리코르도 뒤진 깝가 신진점 로버티 물무시 게옹 미시나셜 나 힌디카님 이직쇼체 인지카 갈압
1: 말의 विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए.
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे

देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलबत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास

दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चने राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है

फिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ी

ने बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुषुलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड एब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। आवर ट्राइकलर इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। वी अनफर्ल इट विथ इमेंस प्राइड। ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट 1947 भारत माता वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ सबजुगेशन। Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antodaya, it is our resolve

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 80वां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। श्रोताओं, सुनिए माननीय राष्ट्रपति जी की

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है लव डीएचपीडी तवांग से, पासंग ग्वनपो नीमा दवा और सांगे ट्रेमा से मिस्टर इंडिया फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है जावेद अख्तर ने, गाया किशोर कुमार ने और

0: वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौकेलाल वर्मा, मलवा रेडियो श्रोता संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश दाकट नायमा, रांजूबाई दाकट, युवराज सिंह दाकट और शिवांगी दाकट ने आप सभी के फरमाइश पर प्रस्तुत है कर्मा फिल्म से दिलीप कुमार, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू सुबह।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारस मनी।

श्रोताओं, भी अब आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा राष्ट्रमंडल खेलों में बेटियों ने देश का मान बढ़ाया। इगा स्वायतेक और बेन शेल्टन ने कनाडा ओपन टेनिस का खिताब जीता। डुरंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी अपने अपने मुकाबले जीते। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में कल भारतीय पुरुष टीम का सामना नीदरलैंड से होगा और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप के चौथे दौर में जॉर्डन वन फॉरेस्ट को हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में देश के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं।
1: In the recently concluded Commonwealth Games in Glasgow, women have won 8 out of India's total tally of 13 gold medals.
0: अब बात कनाडा ओपन पर करते हैं। इगा स्वायतेक और बेन शेल्टन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में इगा स्वायतेक ने एलिना रिबाकिना को 6-2, 6-3 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टोरंटो में खेले गए फाइनल में स्वायतेक ने कैनेडियन टूर्नामेंट में जारी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले सेट में ही बढ़त बना ली। दूसरे सेट में दो मिस बैकहैंड ने स्वायतेक को एक और ब्रेक दिया। रिबाकिना एक चैंपियनशिप पॉइंट बचाने में कामयाब रही, लेकिन स्वायतेक ने पिछले सितंबर के बाद से अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए दूसरे मौके को भुना लिया। यूएस ओपन के मद्देनजर स्वायतेक के लिए ये जीत बहुत अहम है। अमरीका के बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार कैनेडियन ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में शेल्टन ने अपने ही देश की पांचवी वरीयता प्राप्त ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3, 7-6 से हराया। शेल्टन का ये दूसरा एटीपी मास्टर्स खिताब है। बेन शेल्टन खिताबी जीत के साथ ही इस सदी में एंडी मरे, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बाद अपने कनाडा ओपन खिताब को सफलतापूर्वक बचाने में सफल रहने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। शेल्टन ने बिना कोई सेट गंवाए इस सीजन का चौथा खिताब जीता। इससे पहले 2026 में डेलास, म्यूनिख और स्टुटगार्ट में वे जीत हासिल कर चुके हैं। अमरीकी खिलाड़ी के नाम अब 7 एटीपी टूर खिताब हैं। नाकाशिमा अपने पहले मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और अपना दूसरा एटीपी टूर टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे। नाकाशिमा ने अपना पहला खिताब 2022 में सैन डिएगो में जीता था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने। इगा स्वायतेक की बात कर ली या बेन शेल्टन की, लेकिन मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में क्या कुछ रिजल्ट रहा आज?
3: देखिए प्रशांत, अगर मेंस डबल्स की बात करें तो राफेल मेटोस और ओरलैंडो लूस की जोड़ी ने मैट पाविक और मार्लेलो ओरेविलो की जोड़ी को 5-7, 6-4, 10-6 से हराया। इसके अलावा अगर वुमेन्स डबल्स की बात करें तो कैटरीना सिनिकोमोवा और झांग सुजाई ने सारा ईरानी और नरोलो मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। इन दोनों मुकाबलों की बात अगर हटाएं तो एक ब्रेंडन नकाशिमा ने जो अपने पहले 1000 मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और वो अपने दूसरा टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना जो पहला टाइटल है वो 2022 में जीता था, हालांकि वो इस प्रयास में असफल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया।
0: डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: शिलोंग लाजोंग एफसी की इस जीत से ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर एफसी की क्वार्टर फाइनल में जगह भी पक्की हो गई है। मुकाबले के 26वें मिनट में जोटा ने विपक्षी टीम के डिफेंस को भेदते हुए गोल किया। 4 मिनट बाद शिलोंग लाजोंग ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ की शुरुआत में लैंगसनिंग के मुखिम ने 49वें मिनट में गोल करके अंतर को आधा कर दिया। 63वें

0: मिनट में वाडा जीत ने शानदार हेडर मारकर स्कोर बराबर कर दिया। 82वें मिनट में शिलोंग लाजोंग को सफलता मिली। सना के हेडर ने लिंगदो को छकाते हुए गोल किया। लैंगसनिंग की ओर से अहमद ने हेडर से गोल किया और मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद ये मुकाबला 3-3 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप सी के आखिरी मैच में जमशेदपुर FC ने इंडियन एयरफोर्स FT को 6-0 से करारी शिकस्त दी। इस शानदार जीत में 17 वर्षीय लामसांग ज्वाला की 25 मिनट में लगाई गई हैट्रिक और अमन सीके के बेहतरीन खेल का अहम योगदान रहा। मुकाबले में जमशेदपुर FC ने अपना दबदबा बनाते हुए 4th मिनट में बढ़त हासिल कर ली। हाफ टाइम तक जमशेदपुर 1-0 से आगे रही। 55वें मिनट में लामसांग ज्वाला ने गोल करके जमशेदपुर की बढ़त को दोगुना कर दिया। 64वें मिनट में लामसांग ज्वाला ने जमशेदपुर को तीसरी सफलता दिलाई। अमन सीके ने आखिरकार 71वें मिनट में गोल करके अपना नाम स्कोर शीट पर दर्ज कराया। 80वें मिनट में लामसांग ज्वाला ने अपनी हैट्रिक पूरी की। 17 वर्षीय सब्स्टिट्यूट रियान ने 84वें मिनट में छठा गोल किया। ग्रुप एफ के अपने आखिरी मैच में कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार FC को 6-0 से शिकस्त दी। हलीचरण नार्जरी ने बोडोलैंड FC के लिए 4 गोल दागने के साथ 2 गोल में असिस्ट भी किया। भले ही बोडोलैंड ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन टॉप 2 रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस मैच में हलीचरण नार्जरी ने दोनों हाफ में 2-2 गोल दागे, जबकि ब्रेक के बाद कौशिक दैमारी और गुआगुआमसार गयारी ने भी गोल करके बोडोलैंड FC की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: टूर्नामेंट में लगातार टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। जमशेदपुर FC और बोडोलैंड FC ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अपनी उम्मीदें बनाए रखी है। मैदान की ओर, भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी। भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। देवदत्त ने अभ्यास मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली थी। अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की बल्लेबाजी को सुदृढ़ करेंगे। वहीं ध्रुव जुरेल भी पहले से ही स्क्वाड का हिस्सा है। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मुकाबले में इन दोनों में से किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। अनुभवी रविंदर जडेजा लोअर डाउन दी ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारतीय WTC की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें स्थान पर है। मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम को WTC के फाइनल में जगह बनाना है।
3: वेरी कंफर्टेबल विद द रोल एंड आई थिंक द काइंड ऑफ वे वी हैव बीन यू नो प्रोग्रेसिंग इन द पास्ट 1 ईयर हैज बीन वेरी प्लीजिंग टू सी इन माय पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक वी आर टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली द मेन गोल इज टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल व्हिच इज नेक्स्ट ईयर एंड वी हैव गॉट अबाउट 9 टेस्ट एंड आई थिंक वी हैव टू विन अराउंड 6 or 7 टू बी एबल टू हैव अ गुड चांस एट qualifying. So in terms of that, I think this is a very important series for us and we have had the right kind of preparation leading up to the series.
2: Captain Shubman Gill ne warm-up match mein shatakiye ke liye wale Devdutt Padikkal ki prashansa ki. Wahin dusri aur Sri Lanka team gharelu maidan par jeet darj kar WTC ki umeede barqarar rakhna chahegi. Vaishnavi, Sports Scan.
1: लगातार विशेष इधर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। कैसा रहा आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबलों का हाल?
4: ये प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है और बांग्लादेश 153 रनों की लीड के साथ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे और उनकी तरफ से सबसे ज्यादा योगदान जो है स्टीव स्मिथ ने दिया था। 109 गेंदों पर 71 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें हम बांग्लादेश की, तो हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो तंजीद हसन तमीम ने 101 रन बनाकर बहुत ही मजबूत शुरुआत दिलाई थी बांग्लादेश को। उसके बाद मोमिनुल और नजमुल हुसैन सांतो और मुशफिकुर रहीम ने 49, 84, 36

0: 35 रन के योगदान देकर टीम के जो लीड है उसमें अहम भूमिका निभाई। और अंतिम बल्लेबाजों की श्रेणी में मेहंदी हसन मिराज ने भी 32 रनों का योगदान दिया।
1: जी और श्रोताओं, आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। विशेष अगर हम इस श्रृंखला की बात की जाए तो आज दूसरा ही दिन है और न जाने कितने रिकॉर्ड बने हैं और कितने ध्वस्त हो गए। कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं इस सीरीज में अब तक?
0: प्रशांत, ये सीरीज काफी ऐतिहासिक है क्योंकि 23 साल बाद जो है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कोई टेस्ट मुकाबला खेलने जा रही है। अगर हम पहले रिकॉर्ड की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 433 जो विकेट थे रंगना हेरात के, उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड से विकेट लेने के लिए जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है रिकॉर्ड। वहीं तंजीद हसन पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में, तो ये काफी ऐतिहासिक है और ये सीरीज सभी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अगर विशेष बात की जाए तो दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और बांग्लादेश जो है 153 रन की लीड ले चुका है और कल से भारत और श्रीलंका की टेस्ट श्रृंखला भी शुरू हो रही है और WTC में जैसा कि शुभमन गिल ने भी बताया कि वो फाइनल खेलना चाहते हैं, तो अगर बांग्लादेश ये मुकाबला जीतता है तो किस तरीके से ये भारत के पक्ष में जाएगा?
0: प्रशांत, अगर बांग्लादेश ये मुकाबला और साथ ही साथ ये सीरीज जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया जो पहले स्थान पर मौजूद है 87.5 अंकों के साथ उनके अंकों में काफी गिरावट आएगी और भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर संकेत होंगे। सिर्फ भारत को अपने मुकाबलों पर ध्यान देना है और दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको भी क्या बोलते हैं कि पछाड़ना चाहिए।
1: जी, और चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी विश्व कप कल से नीदरलैंड्स में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम कल नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में वेल्स से मुकाबला करेगी, वहीं महिला टीम रविवार को चीन से खेलेगी।
2: लगातार दो ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कल वेल्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर उपहार देना चाहेगी। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने एकमात्र विश्व कप 1975 में कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। इससे पहले 1971 में कांस और 1973 में रजत पदक अपने नाम किया था, लेकिन पिछले 51 साल में पोडियम पर जगह बनाने में भारतीय टीम नाकाम रही है। भारत इंग्लैंड से 17 अगस्त को और पाकिस्तान से 19 अगस्त को लीग चरण में खेलेगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम उसी मानसिकता और तैयारी के साथ उतरेगी जो पिछले दो ओलंपिक में थी।
3: वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप का प्रेशर एक अलग होता है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जो भी टारगेट हमारे सामने है, ऐसे हम टीम उसको लें और ऐसे टीम उसको फेस करें, तो डेफिनेटली आई थिंक कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बट उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो चीज वहाँ पे रहेगी एंड वी बिलीव के जो हमने ट्रेनिंग की है, जो हमने लास्ट मैचेस खेले हैं, उसको लेकर आई थिंक टीम बहुत पूरे कॉन्फिडेंस में है एंड आई बिलीव के हम।
2: वहीं भारतीय महिला टीम को स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे की कप्तानी से बहुत उम्मीदें हैं। सविता पूनिया और बिचू देवी टीम में गोलकीपर हैं। ब्रेक फ्लिकर दीपिका सहरावत पर गोल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने जून में नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन किया था। नवनीत कौर और युवा मिडफील्डर साक्षी राणा पर भी सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय टीम 16 अगस्त को चीन से, 18 को दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। नए प्रारूप वाले इस विश्व कप में खेल प्रशंसकों को भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीदें हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: बात शतरंज पर, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने पिछले दौर में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए सिंगफील्ड कप के चौथे दौर में नीदरलैंड्स के जॉर्डन वान फॉरेस्ट को हराया और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय रक्षा की मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास की सराहना की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक

0: कौन है?
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।

0: सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
0: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
0: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र और साधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
0: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन

समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति

0: रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का

0: दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रूपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल सुबह 6:40 पर एक विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री थुतन टाशी।